0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: Coming up next,
4: The Breakfast Show with Shermeen.
5: City FM
4: 89.
6: Trending today.
7: The BBC is officially bringing Top Gear back to television screens. The storied program paused production in 2022 following a crash involving presenter Andrew Flintoff. Securing the right dynamic for the camera has historically proven difficult for the network. Following the legendary run of Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May, the previous lineup of Flintoff, Paddy, and Chris Harris managed to find a solid rhythm before the tragedy cut their tenure short. No concrete timeline has been established yet on when the series will release.
1: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: This show is brought to you by Jazz.
10: City FM 89.
9: This show is brought to you by
11: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
12: City FM 89.
13: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
11: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: सिटी
4: एफएम 89.
0: म्यूजिक, इफ यूज्ड इन द राइट वे, हैज द एबिलिटी

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
1: City FM 89.
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
7: शौकत खानम, कराची की तकमील.
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanam.org.pk visit karein.
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
9: एक्सप्लोर करो, कुछ न्यू करो एट यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, क्योंकि यहाँ हर स्टडी वेंचर बनता है एक एडवेंचर. एडमिशन्स ओपन फॉर ऑल क्लासेस अप टू मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल. यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज.
10: अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस.
11: अटेंशन फ्यूचर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बोर्डिंग कॉल. योर फ्यूचर इज नाउ बोर्डिंग.
12: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
13: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
11: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
12: Register now at aeo.com.pk.
14: City FM 89.
15: You got me going crazy.
1: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: City FM 89
3: on the dial.
4: The first time at the disco. When you love holiday with friends, retro cinema.
5: Hey, where did we go? Days when the rains came.
4: To music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
6: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
7: City FM 89.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City FM 89, we're playing the song.
11: You're listening to
12: Future Sounds.
13: Future Sounds.